0: जा मैं नहीं
1: क्या यार तुम लोग
2: अच्छा
3: मैं नहीं आ रहा
2: अरे कितना
3: रिलैक्स
1: चल मैं अकेले
3: चल चल तू जा भाई
2: तू जा